को आस जगत गुरु की पार्श पेट पर्श करो रामदास गुरु हर सत की ओ समरथ गुर सिर हाथ तरे ओ कसमल जाय हर घनन कसमल जा हर घनन।

गुरु अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल जास चरण कमल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास नये रामदास सरी नये रामदास नये रामदास सरी दस सरी दस सर नये रामदास सरी नये रामदास नये रामदास सरी हम अब गुण बर

रघुवंश रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं सतगुर सेव अलखगत जाकी श्री गुरु रामदास तारण तरणं।

मच्छी दे अंदर चला गया ओ टुकड़ा। शिकारी आया उसने मच्छी पकड़ी, जदों मच्छी कट्टी उस पत्रे नू उसने तीर दे अगे जड़ा दिता, ते सात संगत ओयो तीर भगवान कृष्ण जी दे चरणां च लगा। सिर्फ भगवान कृष्ण जी एक यादव दी कुल दे विचू रह गए सन, ता उन्हां दा चलाना भी उस तीर नाल होया। साधु दा बचन कदे टल नहीं सकदा। साधु ने इहो ही गल कही सी कि इहदे पेट चों ओ कुछ होएगा जिहड़ा यादवां दी कुल दा नाश करेगा। ता इत्थे राजा चरणां ते डिग पिया, कहण लगा जी ए मैनू खानी पैगी। कहण लगा फिर इन्नी मैं नहीं खा सकदा, मेरे ते बख्शिश करो। ते महापुरुष कहण लगे तू की चाहना? कहण लगा जी मैं चाहना ए लिद घट जाए, किसे तरीके घट जाए, मैं खाण वास्ते तां तैयार हां, मैं इसे जन्म विच ही खा लैना, अगला जन्म लैण दी लोड़ ही ना पवे। तां महापुरुष कहण लगे हुण इंज हो सकदा है, तू कोई ऐसा कम कर जिस कम नाल लोग तेरी निंदिया करन। ते सात संगत ज्यों ज्यों कोई किस दी निंदिया करदा ना उहदी मैल धोपदी। कहण लगे तू निंदिया कर, ज्यों ज्यों निंदिया करदा जाएगा ए लिद कटदी जाएगी। ते सात संगत राजे ने अपनी निंदिया करवाई, कई तरीके वरते अपनी निंदिया दे, लोकां ने खूब निंदिया कीती। राजा तां बड़ा चंगा सी, हुण इहदी बुद्धि भ्रिष्ट हो गई। राजा तां किसी वल बुरी निगाह नहीं सी देखदा, ते हुण अपने नाल पराईयां इस्त्रियां नू रखदा है। इह सारा कुछ राजा करैक्टर दा माड़ा नहीं सी, लेकिन इह सारा कुछ उसने कीता कि लोक मेरी निंदिया करन। ते सत संगत ज्यों ज्यों निंदिया हुई, एक दिन फिर उसने आके देखिया ओनी क लिद बच गई जिन्नी क उसने दित्ती सी। ते कहण लगा महाराज ए किवें कटेगी? ते महापुरुष कहण लगे ए तां तैनूं खाणी पैगी। ते सत संगत राजे ने फिर एक बड़ा कीमती कुश्ता बनाया, जिसनूं असीं पंजीरी कहने आ, बड़ा कीमती कुश्ता बनाया। उस कुश्ते दे विच लिद पा के ते जदों राजा अमृत वेले उठ के दुध नाल ओ कुश्ता खांदा सी ना, ते उसनूं चेता आ जांदा सी इहदे विच लिद वी पई हुई। उदों बड़ा दुखी हुंदा सी।

कैसी प्रीत कैसा प्यार करते सन रब दे नाल अपने शरीर क्यों बयान करते हैं।

अयाकार पुरुष जेतु देवाओं में मैं बती बन जाऊं, मैं बती बन के बीच सड़ा तेरे को।

औरत के जिस तरह औरत अपने पति को बगैर नहीं रह सकती, ऐ अकाल पुरुष तू मेरा पति, इसी तरह मम्मी तेरे बगैर नहीं रह सकती।

का दर्शन कीते ने मेरे प्यारे दे, मैं नहीं कीते, मैनू दर्शन का करा, मैं अपना सिर ला के दे दिया, कादे वास्ते एक चिन्ह मात्र

परमेश्वर के नाल इस तरह प्यार करता है जिस तरह जिवें मच्छी पानी के नाल प्रीत करती वो पानी तो बगैर नहीं रह सकती कि मैं अपने प्रभु तो बगैर जिंदा नहीं रह सकता।

मैं तेरे तू बलिहार जाना मेरे वाल मुंह कर फिर क्यों कीती मैं तेरे तू बलिहार जाना मेरे दर्शन ता दे

पर्दे लाते हैं, पाप करते हैं। कहते मैनू कोई नहीं देखता, पर ये भुल जाते परमेश्वर का अंतरयामी।

शरीर पर मायावल ध्यान रख दे। अंत वेले मंजीते पे देखें दे मना दुनिया तू ऐवें तो चल मन मुताबक माया भी ना कमा सके ध्यान मायावल मौत हो गई ते अगला जन्म ओनू सप का मिलता है। आप पता है सप जिहड़ा माया ते रहिंदा इस तरह ओ इंसान वासना दा बद्दा होया अगला जन्म

0: अब की बार बख्श बंदे को बाहर ना पा मिले। बहुत दुख उठा ले जमन मरन बहुत तकलीफा चल रही हैं। इस आत्मा नू अपने घर विच बुला लो। इस भटकदी भरम की आत्मा नू अपने दर ते प्रवान कर लो। मुड़के जन्म ना हो गए बोलो
1: सतनाम।
0: जमन मरन तो मुक्त कर दियो। ये सारे पुआड़े जमन मरन करके ही सब नो वड़ा दुख जमन ते मरन दा ही है। बिच बचाले हो दुख तकलीफा कितनिया पाउंदा है। बार बार जमी जांदा बार बार मरी जांदा है कितनिया तकलीफा पाउंदा है। ते सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे ते मेरा जमन मरन कट दे। हुण जहांगीर आम बंदा क्या जमन मरन कट देवेगा। वो तो खुद जमन मरन दे गेट च पिया होया है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: वो कहिंदा पैसा लै लो माया लै लै पिंड लै लै। सिख कहिंदा महाराज ने झूठिया चीजा दे विच मेरा तां जन्म ये मौलिक जन्म निकल जाएगा। मैनू महाराज परमावो ना मैनू ये झूठिया चीजा दे विच ना रखो मैनू सच्ची दात बख्शिश करो। बोलो हुण ये गुरु तो बिना कौन करेगा। जमना मरना कौन कट देवेगा। मुक्त कौन कर सकता है। जमा तो कौन बचा सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुक्ति दा दाता कौन है। हुण जहांगीर मुक्ति दे सकता है किते नाम दी दात वो दे सकता है नहीं। महाराज कहंदे हन जिस वस्तु को लैन तू आया राम नाम संतन कर।

जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावा। हर जन राम नाम गुण गावा। जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावा। रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावा।

थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगात कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई, ते ज्यों इस मच्छी नूं चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा है कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नू, ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होन वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घर वाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी ओथे ही टकरा मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ए शे दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न दे पेट दा बच्चा, ए चारे पुरख हन, शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ए दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया, ता अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

बाहर की अगन जा बुझे जल सरता कै, नाव में जो आग लगे कैसे कै बुझाई। बाहर की अगन ज्यों बुझे जल सर...

नारिंद कह मारे महीपत जियो कैसे को बचाइया। माया डर डर पत हार गुरुद्वारे जाइया। माया डर डर पत हार गुरुद्वारे जाइया। तहां जो बे आपे माया कहां

ठाट तो उत्पन्न होना संपूर्ण जाति का राग है ते एदा वादी संवादी कुछ लोग मां ते सामान दे ते कई धार ते गंधार नू वादी संवादी मनते हैं लेकिन ए गाण दे विच कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा चाल यदि कोई होगी वादी संवादी भावे मां सावे भावे धार ते गावे।

देह बहर न पावा कछु उपाव मुक्त का कर रहे। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर लै। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतों की बाणी, संतों की बाणी, गुरुआ की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारिया की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र की है। ये सारे संतों भगतों के सत

अमृत दिनो ता अटल अमर नाम हुआ। ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहने वाला अटल जीवन है। ऐसा जीवन बख्शिया है जेड़ा मौत तो ऊपर है। और आप देखते दे हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जाती, मनुखी जीवन दी कहानी मुक जाती। लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होती। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस, औगण मर जाते नकारा मनुख मर जाता। एक सच्चे मनुख का जन्म हुंदा, गुणा का जन्म हुंदा, दैवी गुणा नूं लैके मनुख उपर नूं उठदा, गुरु नूं प्यारा लगदा, गुरु नूं पाउंदा है, संसार नूं चंगा लगदा। और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू, जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे। तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी, तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे। तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए, सरदार हो गए, मान वाले हो गए। रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो, और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है, तेरी दरगाह विच भी मिलता है। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले है चूके सब सोग संतापे। जिंदगी विचों संताप निकल गए, चैन आ गया, सुख आ गया जीवन में, कायर होंदे सां बहादुर बना दिता, नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता, आलसी होंदे सां उद्यमी बना दिता, बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता, परोपकारी बना दिता। और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है, अमृत दियां दातां दे के, नाम दियां दातां दे के, पानी दी सौगात बख्श के, जीवन दा सुचज बख्शिया। साहब कहंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया, तिस गुर को हों सदा घुमाया, मैं वारने जावां उस सतगुरु तो, तिस गुर को हों खन्नीए, मैं टोटे टोटे हो जावां परिहारने जावां उस तो। जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया, जिसने वाहिगुरू का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया, तिस गुर को हों वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया, होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने, तिस सतगुर को वड पुन है उहदा कोट आन कोट धनवाद, उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते। जिन अवगुण कट गुणी समझाया, सदा उस सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है, उहदा परोपकार साडे सिर ते, उहदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है। जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु पौ साडे, साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के, अपने प्यार दी निशानी ला के, अपना बना के अपना रूप दिता है, अपना सुचज बख्शी है, अपना प्यार बख्शी है, असी उहदा देना है, असी उहदे कर्जई हां, हम कर्ज गुरु पौ साडे।